दोस्तों, ताजी हवा में सांस लेना आत्मा के लिए औषधि के समान होता है। ताजी हवा में गहरी सांस लेने से ना केवल फेफड़े भर जाते हैं बल्कि मन भी शांति से भर जाता है और खुशियां ही खुशियां चारों ओर छा जाती है। तो क्यों ना हम भी ताजी हवा में सांस लें।

0: ଯେଉଁ ଲୋକ ବିବେକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଲୋକ କ୍ରମେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଯାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମାଚାର ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ଫରହତ ନାଜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने से कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी राउरकेला श्रोताबंधु कार्यक्रम प्रचार करा जाउछि 102.6 मेगाहर्ट्ज जुगे प्रचार करुछौ भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना आजिर शीर्षक रथयात्रा विशेष
3: नीलाद्री बिहारी महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पवित्र श्रीगुंडीचा उपलक्षे तांकर श्रीचरणरे आमर गभीर भक्तिपूत श्रद्धांजलि नीलाद्री बिहारी बळियार भुज महाप्रभु श्री जगन्नाथ गर्भगंजन महाबाहु आर्तत्राण दैतारी से सीमारे असीम रूपरे रूपातीत भावरे भावातीत से अनाम अनाकार अक्षय सच्चिदानंद से सर्वभूतरे विराजमान सर्वव्यापी सनातन

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन्य स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने

0: ଶୁଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ।
1: अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणस्य अनन्तरं गत अर्धत्रिमासे अनेके महत्वपूर्णाः उपायाः कृताः। दोषिणः गृहीत्वा कारागारे स्थापिताः सन्ति। गतरात्रौ प्रसारिते एकस्मिन् दृश्य श्रव्य सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रशासनस्य प्रथमं उत्तरदायित्वं विद्यार्थिनां शैक्षणिक वर्षस्य संरक्षणम् आसीत्। अत एव परीक्षाणाम् अविलम्बेन आयोजनम् अत्यावश्यकम् आसीत्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशनं न लघु विषयः, अपि तु एतेन लक्षशः विद्यार्थिना तेषाम् अभिभावकाश्च अत्यन्तं पीडिताः अभवन्। रोमानिया देशस्य आधिकारिक यात्रारता राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य बुखारेस्ट नगरस्य विक्टोरिया पैलेस इत्यत्र रोमानिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणा इली बोलोजान इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। सा रोमानिया देशस्य राष्ट्रपतिना निकुसोर दारी इत्यनेन सह भारत रोमानिया बिजनेस फोरम सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यति। तदनन्तरं राष्ट्रपतिः मुर्मुः रोमानिया देशस्य संसदि गमिष्यति, यत्र सा सिनेट इत्यस्य अध्यक्षा मर्सिया अब्रुडीन तथा चेम्बर ऑफ डेप्यूटीज इत्यस्य अध्यक्षा सोरिन ग्रिंडेनु इत्यनया च सह वार्तालापं करिष्यति। दिल्ली उच्च न्यायालयेन सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 इत्यस्य अन्तर्गतं प्रकरणानां श्रवणार्थं तक्षण प्रभावेण नूतनः फास्ट ट्रैक इति शीघ्र न्यायालयः स्थापितः। उच्च न्यायालयस्य अधिसूचनानुसारं राउज एवेन्यू न्यायालये न्यायाधिकारिणः अनु ग्रोवर बलीगा इत्यस्याः न्यायपीठं विशेष रूपेण नाम निर्दिष्टः शीघ्र न्यायालयः भविष्यति। अत्र सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम संबद्ध प्रकरणानां तथा तैः सह संबद्धानां अपराधानां श्रवणं भविष्यति। 30,000 न्यायालयस्य मध्यस्थता केन्द्रस्य प्रभारयुक्ता न्यायाधीशा अनु ग्रोवर बलीगा अस्य प्रयोजनस्य कृते विशेष न्यायाधीशरूपेण राउस एवेन्यू न्यायालयं स्थानान्तरिता। अस्य निर्णयस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षासु अनुचित साधन सम्बद्ध प्रकरणानां शीघ्र निर्णयं सुनिश्चेतुम् अस्ति। एषा अधिसूचना प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रश्नपत्रस्य अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणेषु संलिप्तानां व्यक्तिनां शीघ्रं कठोर दण्ड विधानार्थं शीघ्र न्यायालय स्थापनायाः घोषणानन्तरं कतिपय होरानन्तरम् एव प्रख्यापिता। केन्द्रेण विभिन्नेषु मन्त्रालयेषु विभागेषु च सचिवाः नियुक्ताः सन्ति। विनीत जोशी यः सम्प्रति शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा सचिवः अस्ति, सः पञ्चायती राज मन्त्रालयस्य सचिवः अभवत्। नरेश पालः गंगवारः नूतनः उच्च शिक्षा सचिवः भविष्यति। टीके अनिल कुमारः विद्यालय शिक्षायाः साक्षरतायाः च सचिवः भविष्यति। आवासन नगर कार्य विभागस्य सचिवः कटी किथला श्रीनिवासः पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकास मन्त्रालयस्य सचिवत्वेन नियुक्तः अभवत्। केशवचन्द्रा इत्येषः खनन मन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। चन्द्रभूषण कुमारश्च श्रमाजीविका मन्त्रालयस्य सचिवः भविष्यति। सुशील कुमार लोहानी इत्येषः पशुपालनस्य दुग्ध व्यवसायस्य च सचिवः भविष्यति। सत्येन्द्र सिंहः नगर विकास विभागस्य सचिवत्वेन भविष्यति। पीयूष गोयलः राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगस्य महासचिवः भविष्यति। मन्त्रिमण्डलस्य नियुक्ति समित्या एतेषां नियुक्तिः स्वीकृता अस्ति। दिल्ली मेट्रो रेल निगमः DMRC इत्येषः सूचितवान् यत् अद्य प्रातः 7:30 राष्ट्रिय राजधान्यां सुरक्षाकारणात् अग्रिम निर्देशपर्यन्तं 17 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि भविष्यन्ति। एतेषु स्थानकेषु लोककल्याणमार्गः राजीव चौक पटेल चौक आश्री रामकृष्ण आश्रम मार्गः बाराखंभा मार्गः सर्वोच्च न्यायालयः सेवातीर्थादि स्थानकानि सन्ति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी राउरकेला। শ্রোতাবন্ধু কার্যক্রম প্রচার করা যাচ্ছে 102.6 মেগাহার্টজ যোগে। আসন্ত শুনিবা আজি প্রচার হেবাকু থিবা কার্যক্রম সম্পর্কে সূচনা। সকাল 7:25 রয়েছে কার্যক্রম বিকাশ ধারা। আজি এথিরে শুনিবা কার্গিল বিজয় দিবস, বীরতা ও বলিদানর অমর গাথা। কার্যক্রম প্রযোজনায় বসন্ত কুমার স্বাই, উপস্থাপনায় মধুস্মিতা বিশ্বাল। সকাল 8:30 প্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র এবং মাতা সুভদ্রাঙ্কর পবিত্র বহড়া যাত্রার সিধা প্রসারণ শুনিপারিবে পুরী বড়দাণ্ডর। দিন 12:30 এনসিইআরটি প্রায়োজিত কার্যক্রম উমঙ্গ 1335 ভাগ শুণবে। সন্ধ্যা অধিবেশনরে সন্ধ্যা 5টায় রয়েছে আরতি কার্যক্রম। 5:20 শ্রীমদ ভাগবত, আজি শুণবা এর 463 ভাগ, প্রযোজনা সুহাস মহান্তি। সন্ধ্যা 5:30 নারীমহল কার্যক্রম, আজি এথি শুণবা আলোচনা এসএসজি গ্রুপ মাধ্যমে আজির স্বাবলম্বী নারী, আলোচনা করেছেন রানী মজুমদার। 6:10 ওড়িয়া ভক্তিগীতর কার্যক্রম। সন্ধ্যা 6:55 আজির প্রসঙ্গ, 7:25 জেলা হালচাল কার্যক্রমের শুণবা বৌদ্ধ জেলা সম্পর্কে। খেতখমার কার্যক্রম সন্ধ্যা 7:30 শুণবা এর আলোচনা বর্ষা দিনিয়া ধান ও পনিপরিবা চাষ, আলোচনা করেছেন রাজগামপুর চুঙ্গিমাটি ব্লকর রীনা একা। রাতে 8টায় সংসদ সমীক্ষা, রাতে 8:15 হিন্দি সিনে সঙ্গীত কার্যক্রম, রাতে 10টায় নাটক ভক্ত বলিগাঁ দাস, স্ক্রিপ্ট লিখিছেন ডক্টর ব্রজমোহন মহান্তি, প্রযোজনা গোপবন্ধু চৌধুরী, সঙ্গীত রাখালচন্দ্র মহান্তি। শ্রোতাবন্ধু এটি আজ প্রচার হওয়াকু থিবা কার্যক্রম সম্পর্কে সূচনা। আকাশবাণী রাউরকেলা কার্যক্রম প্রচার করা যাচ্ছে 102.6 মেগাহার্টজ যোগে। পরবর্তী কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী কটক কেন্দ্রর।

0: आकाशवाणीर सहयोग नियंतु आउ व्यवसायकु नै जानतु सफलतार शिखरकु।
1: आपनको व्यवसाय स्थानीय हेउ कि राष्ट्रीय, आकाशवाणी पाखरे अछि उपभोक्ताक निकटरे पहुँचिबार समस्त मार्ग।
0: घर हेउ कि अफिस अबा दोकान, सबुठी बसि आकाशवाणीर जेकोनोसी केन्द्रे विज्ञापन पाई बुकिंग करि पारिबे।
1: आकाशवाणीर विभिन्न चैनल विज्ञापन देबा बहु सहज, सुलभ आउ सस्ता।
0: बुकिंग पाई जोगाजोग करंतु ए टेलीफोन नंबर 8700001 4242।
1: हाँ, 8700001 4242।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
1: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस

0: और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहाँ भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: हठात असुस्थ हुंती किंबा जरूरी चिकित्सार आवश्यकता हुए तेबे निकटस्थ मेडिकल पोस्ट स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्वास्थ्य कर्मी पुलिस किंबा स्वेच्छासेवी को तुरंत सूचना दियंतु। रथयात्रा समय पुरी एवं आखपाख अंचल प्रमुख स्थान जथा
1: गांडुआ चौरा छक
0: सिंहद्वार रथ निकटरे टाउन थाना दिगबारिणी खुंटी स्वर्गद्वार लाइट हाउस पुलिस हॉस्पिटल टीबी एवं आईडीएच गुंडीचा मंदिर मालती पाटपुर बस स्टैंड चंदनपुर सीएचसी साखी गोपाल सीएचसी सातशंख सीएचसी पिपिली सीएचसी बालीघाई छक कोणार्क पीएचसी गोप सीएचसी निमापड़ा गिराल छक
1: रेबणा नुआगा
0: सीएचसी सातपड़ा डाक्तरखाना आदि स्थान रे 46 टी सरकारी एम्बुलेंस सह 36 टी बेसरकारी एनजीओ एम्बुलेंस को मिसई मोट 82 टी एम्बुलेंस मुतयन करा जायछि। जदि किए असुस्थ अनुभव करे तुरंत 108 को कॉल करंतु। निकटरे थिबा एम्बुलेंस केवल किछि मिनिट मध्यरे घटनास्थल रे पहुंची प्राथमिक चिकित्सा आरंभ करिवो एवं आवश्यक हेले निकटस्थ चिकित्सालय को सुरक्षित भाबरे नेइछिबो। प्रत्येक एम्बुलेंस रे ऑक्सीजन जीवन रक्षाकारी उपकरण और जरूरी औषध सह स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटा स्वास्थ्य सेवा पाई प्रस्तुत रही छंती। समस्त एम्बुलेंस रो परिवहन एम्बुलेंस कॉरिडोर मध्यरे स्वेच्छासेवी एवं पुलिस कर्मचारी मानंक द्वारा कार्यकारी हेबो। मने रखंतु रोगी निमन्ते एम्बुलेंस रो प्रत्येक सेकेंड अमूल्य। आसंतु जरूरी सेवा को सहयोग करिबा ओ सुरक्षित भावे महाप्रभुंक रथयात्रा रे सामिल हेबा।
2: स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार।
3: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि। ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि। एथि सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि। पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे।
4: नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि पवित्र आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बाहुड़ा दशमी महाप्रभुंकर से विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा आउ अल्प समय पर आरंभ हो जहाँ आज प्रथम बूथ रे आलोचना प्रसंग रे कल्याणी कहते अवकाश नीति प्रसंग कारण महाप्रभुंकर जिते सब विधि विधान रही से विधि विधान गुड़िक एभरी भाव गोटे पर गोटे खंजा जा ताको अनुभव कले ही आपण माने जानी पारिबे जे प्रकृतरी ठाकुर केड़े महान। ए कलीजुगर सत्य सनातन परम ब्रह्म दारु ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म स्वरूप रे पुरी श्रीक्षेत्र रे विराजमान करी आज जो भली भाव रे निजर लीला खेला करुचंदी अनुभव कले आपण जानी पारिबे। गतकाली जो नवमी संध्या दर्शन हेतिला श्रद्धालु मानकर एते भीड़ मन रे एते आकुलता व्याकुलता आमे टिके महाप्रभु को देखिबू देखापी जो आकर्षण महाप्रभु को देखीदे सते जमती मनीषर आत्मतृप्त हो जाए जमी गोटे भल जिनस खाइले मनोबोध हो जाए सेमती महाप्रभु को चर्मचक्षु देखीदे आत्मा तोष हो जाए संतुष्ट हो जाए। ये से भगवान जो भगवान को भक्त टे देखापी कहीं के दूर धाई आसपुरी श्रीक्षेत्र हूँ पृथ्वीर श्रेष्ठ धर्मक्षेत्र परम पावन क्षेत्र चारिधाम भितर यार स्वतंत्र प्रसिद्ध रही यार स्वतंत्र रही आपण मैंने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि जो रथयात्रा देखिए अनुभव करुले तार जो धारा बरणी आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणी निजकु धन्य धन्य मन करुले आज यही पवित्र बाहुड़ा यात्रा मध्य से भाव आज आम प्रत्यक्ष जहाँ किसी घटू जहाँ किसी बड़दाण्ड में अनुभूत होमें दुई केन्द्र आपण मानक शुणबू आपण मैने शुणवे एवं अनुभव करे ये महाप्रभु सतरे

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है

0: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं। उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहां प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
1: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है।
0: जी,
1: इसकी पंखुड़ियां तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा।
0: जी,
1: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
0: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
1: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है।
0: जी,
1: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी।
0: जी,
1: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
0: कैलपौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोड़ावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोड़ावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोड़ावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपौध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपौध उत्सव कोड़ावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपौध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपौध उत्सव कहां और किनके द्वारा मनाया जाता है और कैलपौध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, हैं? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: हाँ, ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
4: आई, वो कैसे?
3: अरे भाई, मैं समझाता। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
4: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
3: वो कैसे?
4: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
3: भाई वाह।
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
3: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
4: ये तो है। चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
5: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो, पहुंचे तो सही।
4: वो तो है, लेकिन मित्र, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
5: मैं क्योटो देखूंगा।
4: और मैं ओसाका।
5: क्यों नहीं, चलो
4: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
3: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
4: चलो।
3: संभल कर।
4: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
5: बचे।
6: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
3: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
4: क्या बताओ मित्र, मुझे भी

0: नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो। नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें। हाँ ये ठीक रहेगा।
1: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
0: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
1: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
0: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है।
0: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
0: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
0: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
0: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
0: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी।
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं।
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ।
0: जी।
3: मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी। हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है। इंसानों का वतन यहाँ यहाँ दिल में है, दिल में।
0: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब।

0: इन आंसुओं की तरह।
1: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
0: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

0: दुर्भाग धारण करी तृणा दपि सुनी चेन तरो रोपी सही सुना अमानीय मान देय कीर्तनीय सदाहरी। समग्र विश्व को आज यह कहते जे समस्ते आज्ञा आज्ञा
1: आमर कवि दीनकृष्ण दास गोटे सुंदर कविता रचना करिसेंदी। से कविता गोटे धाड़ी पढ़ी देवा कि से कवितार गोटे धाड़ी
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: से गोटे धाड़ी होती

0: ये प्रसिद्ध कवि द्वितीय युगीय कवि दीनकृष्ण दासंक रचना यार उपर मध्ये आपण टिके कहिबे जदि आउरी बढ़िया हबो
1: दीनकृष्ण दास जी जगन्नाथ को निकट रे इजो को समर्पित कर देथिले एवं तांकर जो रस कल्लळ से प्रभुंकर से लीला को नै वर्णना करथिले से दीनकृष्ण दास जी रीति युगर कवि जहाँ रीति युगर जो आद्य कवि भाव आम ग्रहण करवा ओडिया साहित्य रे दीनकृष्ण दास होती से आदि कवि जी ऋतु युगर प्रभु से भाव चौदह भुवन जी बार्ता जाणी आज समग्र विश्व को से मधुरता प्रदान करी जे रससिंधु जेपरी आज से तट प्रदेश को ग्रास करुच्ची ठीक से हीपरी प्रभुंकर जो मस्तक जो टाहिया आज दोड़ामान होती से टाहिया आज समग्र विश्व को से चतुर्वर्ग प्रदान करपेन्द्र भंज मध्य से कम्बु कटक राजा नामे जगन्नाथ चारि बने चौवर्ग देवाकू समर्थ प्रभु होती से चतुर्वर्ग प्रदानकारी जो चतुर्वर्ग प्रदानकारी वर्तमान टिके रही जाइछन्ति पचारुथिले आज काहीकि मते टिके पूर्वर जणे बंधु पचारुथिले आज प्रभु काहीकि विलम्ब करुछन्ति अरे प्रभु विलम्ब करुनांति भक्तक पाखरु जेतेबेला आसुछन्ति से हली हली आसुछन्ति पुणि चैतन्य महाप्रभु गोटे सुंदर कथाटे मध्य लिखिंट विश्वम्बर जगन्नाथ के चलाइते पारे आपना इच्छा है जले करित बिहार ए प्रभु को किए नब किए धरव किए टाणब निजे तो प्रभु आज आसार कर आनंदर जाता जो जात्रा हूँ पति तपावन जात्रा सुंदर भाव अच्युतानंद दास कहते अनंत कोटि ब्रह्मांड जार गर्भेली न जापादे चिंतन्ति जोगी ध्याने होई मग्न जहाँ करुणा करु तुहि भाव ग्राही तो पादे पद्मरे सिए विलीन हुआई प्रभु आपण होउछन्ति अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्व नियंता त्रिभुवनर पति आपण प्रभु जहाँ को करुणा करिवे समग्र विश्व आपणंकर बिना निर्देश रे पत्र टी हलिबा नाही सेई प्रभु आपणंकर इशारा रे आज ये जो यात्रा होची गुंडीचा नामे यात्रा जी होची ख्यात होची गुंडीचा यात्रा नामे ख्यात परम पावनी रथ यात्रा नामे
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରାବିବରଣୀ ଧାରାବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଡକ୍ଟର କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦୀ ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନଗୋ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜି ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବାଦ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ

0: dramatically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: आकाशवाणी कटक महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पवित्र बाहुडा यात्रार सीधा प्रसारण पई वर्तमान आपण मानकु नै जाउछु श्रीक्षेत्र पुरीर शरधा बालिको
2: अनुभव हेउछि जे समस्तंक भितरे गोटे परिवारर भावना मध्य सृष्टि हे जाउछि काहेकि ना आम महाप्रभु होउछन्ति गोटे परिवारर महाप्रभु भाई अछन्ति भौणी अछन्ति सांगरे सेवक अच्छा आउ भक्त मानू नहीं तेणु ये जो महाप्रभु आम परिवारवादर ठाकुर आकु जो श्रद्धा लक्ष लक्ष श्रद्धा आने समस्ते कौन सी द्वेष ना कहीं का प्रति घृणा भाव ना
3: वसुधैव कुटुंबकम भाव
2: से कथा केवल शब्द से नुह आम प्रत्यक्ष भाव देखुचे
3: अनुभव कर
2: जड़े जन को रास्ता टी मगुच से छाड़ दौंट जन जन को पानी मागिबा पूर्वर से पानी दे दौंट
3: जगन्नाथ प्राणतरे मनीष उद्बुद्ध हो
2: जड़े जदि पा बोतल टे पी पानी की पके दौर बोतल खाली बोतल आउ जो अपेक्षा कर पहरी नहीं जा तेणु गोटे सुंदर परिवार बड़ परिवार वसुधार परिवार जो समग्र विश्व को जो वार्ता श्रीक्षेत्र जाऊँगी बड़दाण्डर ये हूँ महाप्रभुंर दिव्य लीला
3: साजोग सेवा संस्कार और समर्पण ये पांचटी विचार ये पांचटी गुण आम आज अनुभव करुच्छू बड़दाण्ड में बड़गंडी छक पाखे रही आम अनुभव करुचु जी महाप्रभु केते दयालु
2: मानव मानव देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान ये जो दिव्य ज्ञान ये मनीष भितर सृष्टि होवा करने अन्य को साई अन्य को भल पाइबा श्रद्धा करने से आम जानवा दरकार जे प्रकृत मनीष जन्मर सार्थकता हूँ एतिक जे मनीष पणिया गोटे हृदय थिबा दरकार आउ जदि पशु आम भितर ये तफात आम जाचे जे सामान्य मृत पशुभीर नारायणम आहार निद्रा भय मैथुन ये जो चारिटा जिनस पशु आम मान भितर एक एकता रही मात्र समता रही मात्र आम भितर जो दिव्य गुण हूँ
4: अच्छा त्रिपाठी महाशय डॉक्टर कानून को महाशय आप मते सुनि परचंदी
3: हमें समाज रे निश्चित भाव रे जने जने भलो मनुष्य बा एही ज्ञान प्रदान करबा पई महाप्रभु एही प्रकार रो विचार रखी चंदी एही प्रकार रो वार्ता रखी चंदी एही प्रकार रो भाव रखी चंदी एणु आम आशा करबा जे प्रकृत रे महाप्रभु गरे जो विश्व प्रसिद्ध आज बाहुडा यात्रा आम देखुचु अनुभव करुचु
2: प्रथम केन्द्र केन्द्र सहित आमर जोगाजोग रखुचु
4: हाँ मत शुणी पार डॉक्टर त्रिपाठी
3: हाँ हाँ
4: हाँ ये तीन रथरे ठाकुर मान आरूढ़ वर्तमान चारमाल तलु सबु लोक बाहर कर दिया जाउछि आरक्षी बाहिनी माने बहुत लोक थिले चारमाल तले तेणु तांकु निजे पूरी पुलिस एसपी निजे तत्वावधान रे समस्त को बाहर करुछंती परवर्ती कार्यक्रम गजपति महाराजांकर छेरा पहरा हबो किछि सूचना अछि कि सेपटु
3: नै आसी नांती गजपति महाराज आसी नांती किंतु आ अल्प समय भितर आसीबे बोली आमे भाबुचु चिंता करुचु एवं आगुरु तामजान जाइकिरी सही पहुँची जाइची बड़ संकट रे पहुँची जाइची तेणु खबर पाइला परे गजपति महाराज कार रे आसीबे बड़ संक पाखुरु जिबे आपणकर तामजान रे सही सरदा बाली गुंडीचा मंदिर सम्मुखस्थ सही रथ निकट को
4: अच्छा सेपटे गहली केमती अछि
3: बहुत बहुत गहली अछि आज्ञा आपणकर श्रीमंदिर पाखु धीरे धीरे एत बढ़ीगला आप न देखिले विश्वास करें
4: ना ना आपटे श्रीमंदिर आड़ को बाट चाहते केमती जना जा
3: बहुत गहली आज्ञा केवल

0: ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରିବାର ହାତ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦେଇ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନେ ପକେଇକିରି ବସିଗଲେଣି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିବେ, ଦିନମାନଟା ଏକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ସାହସ ରହୁନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ଠାକୁର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ବଳିଆର ଭୁଜ, ଯିଏକି ଅନନ୍ତ, ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଯିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁକିଛି, ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଖାତା ଖତିଆନ, ସବୁ ଦେଖିବେ ଖାତା ଖତିଆନ ହେଉଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ତେଣୁ ଏ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ?
1: ଅନନ୍ତ ସଂସାର ମହାସମୁଦ୍ରେ ମଗ୍ନାନ ସମଭ୍ୟୁଧର ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ରୂପେଣ ବିନିଯୋଜୟସ୍ୱ ଅନନ୍ତ ରୂପାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ। ସାକ୍ଷାତ ଅନନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସେଇ ଅନନ୍ତ ଶିରସି ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଅନନ୍ତ ଫଣା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଉଛେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଟିକେ ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇତି ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାହା ଅତି ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।
0: ଭଗବାନ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହଳ ଆଉ ମୁଷଳ, ଯେଉଁ ହଳ ମୁଷଳ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଇଏ ହେଉଛି କୃଷିର ପ୍ରତୀକ, କୃଷି ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଚାଷ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଚାଷ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୃଷିକର୍ମ କର, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର, ବାସ ଅଛି ତାହାର, ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗାଉଛି ଦୁନିଆକୁ ଆହାର, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା, ଖଟିବା, ଖାଇବା, କର୍ମ କରିବା, ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା ଆମକୁ ଭଗବାନ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଯିଏକି କୃଷିର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏକି ହଳ ଧର, ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ନାଗ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ବିଚାରବନ୍ତ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ବଳରେ ଯେମିତି ବଳିଆନ, ଏବଂ ଭଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭଦ୍ରତାର ଠାକୁର, ତେଣୁ ବଳ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ।
1: ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଆଗରେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବା ରଥର ସ୍ପର୍ଶ, ଆମେ ବା ରଥ ଦୌଡ଼ିର ସ୍ପର୍ଶ କିପରି ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, ଭକ୍ତି ଭଗବାନ, ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ଛଡ଼ା କେହି ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଦ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ବାଟ ଚାଲିଲେଣି କ'ଣ କଲେଣି।
0: ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଯେଉଁ ବଡ଼ଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବୁ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କରି ବସିବୁ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ, ତେଣୁ ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ମମତା ବୋଧେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଅଟକି ଯାଉଛି, ମୋ ଭଉଣୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି।
1: ଆଜି ଯୌଥ ପରିବାରର ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର,
0: ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଚାହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର,
1: ସେଇ ଯୌଥ ପରିବାରର ସୂଚକ ସେଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିବି ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ମୁଁ ଯେତେ କଥା ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବି, କବାଟ ପଡ଼ିଯିବ ପଛେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ, ଯିଏ ମୋତେ ଯାହା ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର କଥାକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେଦିନର ଲେଖା ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ, ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାସାଦ ବାହାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ଫେରେଇ ନେଉଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିତରଣ କରିବେ ଆମର ଘୋଷକମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
0: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
2: जय माँ देवी सुभद्रा, जय जगन्नाथंकर महाप्रभुंकर। जो बड़ भाई वर्तमान आगे गले पड़िया कहते माँ सुभद्रा को बासिले पोड़ पिठा मौसी करी अपेक्षा सुभद्रा भौणी जगन्नाथ को बेगी बेगी उठा से सहल सहल नीति रे वर्तमान से मौसी माँ मंदिर अभिमुखे बड़ भाई बलभद्र चलिले आ बर्षार टिके टिके बारिपाद वर्तमान अनुभव है। यार भितर आम देखिपु प्रशासनिक स्तर में आउ गोटे सुंदर व्यवस्था जमी भक्त मान मस्तक बर्षार जल न तिंतवापी सुंदर भाव में गोटे गोटे जो जरी मध्य समस्त को वितरण करा समस्ते से जरी को टाणी ओटारे नहीं जाऊँच प्रभुं प्रसाद पर किंचित आम मान भ्रम सृष्टि सते जपरी प्रभुं प्रसाद पाइबापी गोटे चली प्रतिजोगिता किंतु वास्तव में ता नुहे जरी खंडीए नहीं समस्ते निजर मस्तक पिंधुंट आपटे प्रस्तुत हेले माँ सुभद्रा रथ जो रथरे रोचिका मोचिका जीता अपराजिता नामक चारिगोटी जो अश्व ता जोचा सरला दाहुक अति सुंदर भाव दुईपटे घोड़ार रही बेत को धरी वर्तमान समस्त श्रद्धालु भक्त को सी बाजिला विजय कहाली घंट घंटुआंकर से घोर घर नाथ जोग माया महादेवी महामाया नमस्तुते ईश्वरी अंग भंजनम ब्रह्मस्थान स्थिता सदा से जीव चैतन्य ब्रह्म चैतन्य को जी एकत्र बंधन बांधि पारती से माया हिरण्य गर्भ सम्भूता सी होंगे से निर्लिप्ता माँ जगज्जननी सुभद्रा रथर से घंटुआ मानकर घंट नाद भक्त माने जदियो से दौड़ी जहाँ शंखचूड़ नामक जो रजु बंधा जाइए ता जगन्नाथ रथ से आई स्वर्णचूड़ नामक जो रजु ता टाणी आनी कि समय पर रही जाता पुनर्बार घंटुआर घर घर नाद से घंट नाद माँ चली आसुंट देवी देवी शक्ति जी दर्प दलन करी समस्त आसुरिका प्रवृत्ति को जी दर्पित भाव दलन कर दे था से माँ जगज्जननी देवी सुभद्रा रथ सुंदर भाव शरधा बालीर प्रांगण में आगक गड़ी जाऊ गड़ी जाऊँगी भक्त माने आनंद शरधा बालीर से धूली को मस्तक अर्पण कर माँ ए संसार को तुम्हें ढांगी रखी था तुम पणत कानी ए संसार समस्त भक्त आपणकर पुत्र सदृश आई समस्त जनता समस्त भक्त को आपणकर से कारुण्य पाथ निधि आपण परा होती जोगी आपण होती से त्यागी आपण होती जय देवी जगत माता प्रसिद्ध परमेश्वरी कार्यकारिणी कर्तृत्व सर्वशक्ति नमस्तुते हे माँ जगदम्बे आपण होती सर्वशक्तिर आधार स्वरूप माँ से माँ से घंट नाद घंटुआर पुणी बाजिला से घंट आहा जो घंटर बादन मध्य स्वतंत्र प्रकार बहंडी बल घंट बाद्य वर्तमान घंटर नाद जदि आपण श्रवण करेंगे निश्चित भाव ता मन भितर गोटे एभली भाव जाग्रत कर जहाँ आमको आह्लादित करमर मन प्राण को एकीभूत करी समस्त शक्ति समस्त सहता माँ पादर आम नियोजित हो जा गोटे लोककथा मन पड़े ये वर्तमान जो श्रीक्षेत्र जो परिवेश श्रीक्षेत्र वातावरण ए भक्त मान भितर जो आवेग कि सुंदर भाव में प्रशासनिक स्तर में व्यवस्था करा जाए गोटे गोटे कागज को जो मुचुला कर बाड़े पकाचं भक्त मान को तार भितर पाग अनुकूल को अनेक लक्ष्य कर आमर गोटे लोकगीत प्रचलित अच्छी आषाढ़ मासे सखी मेघ घड़ घड़ी बाहर प्रभु जे नंदी घोष चढ़ी नंदी घोष रथे जे नंदर नंदन तालध्वज रथे निजे भाई बलराम देवी रथ चढ़ी न सुभद्रा गमन सुभद्रा सहित विजय चक्र सुदर्शन जो चक्रराज सुदर्शन ये माँ देवी सुभद्रा रथ से संयुक्त होती शक्ति सहित शक्ति संजोग जहाँ जीव सहित परमर मिलन भक्त सहित भगवान मिलन ଭାବ ସହିତ ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାବକୁ ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ଭକ୍ତିର ସୁଅ ଛୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତି ଧାରାରେ ଭକ୍ତିର ସେ ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପଛରେ ସାନ ଭାଇ ତ୍ରିଭୁବନର ଈଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ। ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ଶଙ୍ଖରେ ଅତୀତରେ ଦିନେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖୁଆ ନଦୀ ମାଳିନୀ ବା ଯାହାର ଶଙ୍ଖୁଆ ନଦୀର ଗୋଟିଏ ଧାର ମାଳିନୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଛଅ କୋଟି ରଥ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଛଅ କୋଟି ରଥ ଆଜି ତିନି କୋଟି ରଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ ପହଣ୍ଡିରେ ଠାକୁର ଝୁଲି ଝୁଲି ଆଗକୁ ପଛକୁ ହଲି ଯାଉଥିଲେ, ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଘଣ୍ଟ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବରକନ୍ଦାଜ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟୁଆର ତାଳେ ତାଳେ ଘଣ୍ଟର ସେ ଉଦ୍ଘୋଷଣର ତାଳେ ତାଳେ ସେଇ ନାଲି ପତାକାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୋହଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଯେ ରଥ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ଆଗରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରଧାବାଲିରୁ ଆମେ ଯେଉଁଠାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଆରୂଢ଼ ହେଉଛି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ, ସତେ ଯେପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଏ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିନି ଗୋଟି ରଥ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତ ସଦୃଶ ଆଗ ପଛ ହେଇ ରହିଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସଳଖ ଧାରାରେ, ଯେଉଁ ଧାରା ଭିତରେ ଇ ଆତ୍ମାନମ୍ ରଥିନମ୍ ବିଦ୍ଧି ଶରୀରମ୍ ରଥମେବ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ସାରଥି ବିଧି ମନ ପ୍ରଘମେବଚ। ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ, ମନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ରଥ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଇଏ ରଥ ଯେ ରଥ ହେଉଛି ଶରୀର, ସେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ସେ ମାଙ୍କର ରଥ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ମହା ମାୟା ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ସୁଦୂର୍ଦ୍ଧରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃଷ୍ଣାନୁଜା ତେଜ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ପ୍ରଭା ମୋହୟନ୍ତି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବାନୁସାରିଣୀ ହୃଦ ପଦ୍ମାସନ ସଂସ୍ଥା ଚ ଚରାଚର ବିମୋହିନୀ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆପଣାର କରିନେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ମାୟା, ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟା ସିଏ ଅଗମ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଧ୍ୟ, ସେ ଶୋଭାମୟୀ ଶ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଜା। ସେ ଅନୁଜାଙ୍କର ରଥ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଟଣା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଶରଧାବାଲିରୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ରଥକୁ ଟିକିଏ ନାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କର ରଥକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଯିଏ, କାରଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଖ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ହେତୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ତୋ ବିନା କେମିତି ବିଚୁତି ଜୀବନ ଆପଣାର ବୋଲି କେ ନାହିଁ ରେ ଭକତି ପ୍ରେମରେ ତୋତେ ତ ପାଇଛୁ ଜୀବନର ସାଥୀ ଦୁହିଁରେ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରିକା ଶକ୍ତି, ଆପଣ ନଥିଲେ ଏ ସଂସାର ନଥାନ୍ତା, ଏ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଧରା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଲବେଗଙ୍କର ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ, ସେ ଶାଲବେଗଙ୍କର ପୀଠ ଆଡ଼କୁ ବଳଭାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବଳିଆର ଭୁଜଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶରଧା ବାଲିର କିଛି ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ି ସଂଯୋଗ ଚାଲିବ, ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସାରିଲାଣି, କେବଳ ଦୌଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ରଥ ଟଣା ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନାକଚଣା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାକଚଣା ସକାଳ ସମୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ରହିଛି ନାକଚଣା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ बंद हो गला आउ किछि समय परे आउ जगन्नाथ रथ चलिबो तबे मु नै जाउछि ए प्रथम बूथ रे आम निकट रे थिबा आमर डॉक्टर नरेश दास महोदय निकट रु आमे प्रभुंकर ए लीला यात्रा विषय को टिके सुनिबा। जय जगन्नाथ,
3: जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वर्तमान श्री बलभद्रंकर तालध्वज रथ बड़शंख अतिक्रम करिगलेनि एवं आमर देवी सुभद्रांकर दर्पदलन रथ से मध्य बस स्टाण्ड ठारु टिके टिके आगुकु जाइकिरि अटकिकिरि रहिछन्ति एवं ए पर्यंत से श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो नंदीघोष रथ ता प्रस्तुति पथरे अर्थात संपूर्ण भावरे प्रस्तुत होइकिरि अछन्ति। टिके आउ टिके आगुकु गले माँक रथ से रथ टणा जीव सेतिपई महाप्रभु चाहिकरी बसिंट भक्त मान गहल को जीवे एवं भक्त मैंने किसी आगे अच्छा किंतु जो महासमुद्र आगे अच्छी ये तो उपसागर महासागर भितर को से प्रवेश करेंगे जनसमुद्र भितर को भगवान कहते जे मोते भजई मुताकु भजई ये मोर नियत बाणी भक्ति जेणे जाई मुही तेणे जाई नछा रही फालगुनी भक्त मोर देह अंतर नुहई तार मोर एक प्राण भक्त को विपत्ति पड़ई तहि मु उद्धर अरुज अर्जुन वैष्णव माने मोहर कीर्तने दश पांच रुंड होई मुही तांक संगते बसी थाई मोते नची नमती कही। भगवान श्री जगन्नाथ अपेक्षा करिछंति केतबेले ताकर रथ टणा हब एवं सरदा बालीरु से धीरे धीरे धीरे धीरे बड़दाण्ड आड़ को अग्रसर हेबे एवं आहुरी बहुत कार्य रही मौसी माँ से पोड़पिठा बिल्कुल प्रस्तुत करके रखिंट जेतबले प्रभु जीवे सेतबले से पोड़पिठा खुआबे एवं आहुरी गोटे बड़ काम हबो जेतबले श्रीनगर पाखे जा महाप्रभु पहुँचे तेणु बहुत कार्य रही आगरे दुई रथ से सीधा जा पहुँचे सिंहद्वार किंतु श्री जगन्नाथ महाप्रभुं रथ जेतबले जाई पहुँचब श्रीनगर निकट रे सेठारे से रहिबे एवं एही समय रे महालक्ष्मी ठाकुरानी चाहणी मंडप को आसीबे देखिबे जे महाप्रभुं एही पीत लोहित बर्णील जो नंदीघोष रथ से वर्तमान श्रीनगर निकटवर्ती हेलेनि तेणु से सीठ बाहरिबे बाहरिकरी आसीबे पालिंकरे आसीबे सेवक मानंग गहणरे आसीबे बेश पाट मकुटा पिंधिथिबे एवं जेतबले से आसीबे सेतबले बलभद्रंक सम्मुख भागरे गोटे कपड़ा पड़िथिबो तार कारण होउछि ई होउछन्ते देढ़सुर से भाई बहु तेणु देढ़सुर भाई बहुंकर जो संपर्क आपण आज यही जो रथ भेट समय आपण देखिबे तापरे से अतिक्रम करी आसीबे नंदीघोष रथ निकट को महालक्ष्मी ठाकुरानी आज महालक्ष्मी ठाकुरानी आसला परे तांकर मानभंजन करिबा पई प्रक्रिया आरंभ हबो गजपति महाराजा से निजे टेकिकरी माँ को जगन्नाथ सहित मिलन करेबे ए दृश्य अति अपूर्व दृश्य ए आज अनुष्ठित हेबो एवं महाप्रभु ठारु आज्ञामाला आसी तांकु लागि करा जिवो आज्ञामाला पाइला परे शांति हेकि से जिवे किंतु तथापि मनरा कुहुलिबो ताको मन जमा सफा हबनी काहेकि ना कि भलिया काम कले प्रभु ताकु न नेकिरी एडे बड़ यात्रा करिकिरी फेरिले एवं फेरिला फेरिकिरी हेले शीघ्र पळि आसमते पुणी आउरी तीन दिन बाहुड़ा यात्रा परे सुनावेश सुनावेश परे अधरपणा अधरपणा परे नीलाद्री विजय हेले जाइकिरी मु दर्शन करिवि तेणु ताकु रागेबापै जथेष्ट समय मिलि जाउछि एवं ताक राग से दिन शांत हेब जो दिन महाप्रभु नीलाद्री विजय करिवे बड़ देउलर जो बड़ कबाट खोल जय विजय द्वार खोल एवं महालक्ष्मी ठाकुरानी जगन्नाथ निकटने जोबले रसगोला भोग सर ताकर अभिमान भंग हम महाप्रभु जीवे तेणु बर्तमान आधिक मु समय नेबिनी आम पाखे अच्छा आमर वरिष्ठ घोषक एवं विद्वान डॉक्टर शांतनु रथ महोदय मुझे निवेदन करुच्ची से धारा विवरणी प्रदान करेंगे।
4: जय जगन्नाथ। आपण मानू आम श्रोताबंधु सूचना देवा चाहबू जो तीन अंग विशिष्ट रथजात्रार तृतीय अंगे आम उपनीत हो। प्रथम अंग थिला श्रीगुंडीचा जात्रा, महाप्रभु श्रीमंदिर बाहरी घोष जात्रा रे आसिले आड़प मंडप गुंडीचा मंदिर रे सात दिन अवस्थान करी नवम दिन रे तांकर प्रत्यावर्तन जात्रा। एही प्रत्यावर्तन जात्रा रो वर्तमान स्थिति होउची जे बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथ पाखापाखी बड़ शंख पाखरे पहुँचिचंती। माँ सुभद्रांकर दर्पदन रथ यही शरदावाली प्रथम केन्द्र गुंडीचा मंदिर सामनारु किछि बाट आगे कि रही आपण माने जानिचंती। यही रथ मानकर गोटे निर्दिष्ट व्यवधान नहले रथ गुड़िक टणा हो पारे ना, तेणु ये माँ सुभद्रांकर दर्पदलन रथ बलगंडित नुहे बड़शंख पाखापाखि हेले जाइकिरी आमर नंदीघोष रथ टणा हेब। तेणु नंदीघोष रथ टणा हबार जो अपूर्व मुहूर्त से मुहूर्त को समस्त प्रतीक्षा ताकू आम प्रतीक्षा करूँ। किंतु रथर जो शेष पर्याय संपर्क आपण को सूचना देले आमर डॉक्टर नरेश चंद्र दास। आहरी तीनोटी उत्सव अच्छी, गोटे हूँ सुनावेश, गोटे हूँ अधरपणा, आ गोटे हूँ नीलाद्री विजय। ये तीनिटी जाक उत्सव ऐतिहासिक उत्सव। ये पवित्र पावन घोष जात्रार 2026 मसीहार अंतिम चरण से आम उपनीत होचे। आकाशवाणी बड़ सौभाग्य जे 1948 मसीह आकाशवाणी प्रतिष्ठा होगा दिन यही धारा बरणी कर पवित्र पावन अवसर महाप्रभु आकाशवाणी को प्रदान कर। 1948 मसीह 2015 मसीह पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ा बाहुड़ा जात्रार धारा बरणी। बाहुड़ा जात्रार धारा बरणी 2015 आरंभ हो वर्तमान 11 वर्ष पहुँचला। आम अपेक्षा करवा महाप्रभु पुणी केत पुणी आर वर्ष को आमको सुजोग देबे। एवं यही पवित्र घोष जात्रा पावन जात्रार जो बरणी आपण मानक आम दबार सुजोग लाभ करुचु से सुजोग महाप्रभु ही आमको प्रदान करुचंती। महाप्रभु आकाशवाणी को प्रदान करुचंती आकाशवाणी जो विशिष्ट व्यक्ति मानक चयन कर अतीतरु धारा बरणी दबार परंपरा जारी रखिचंती। से परंपर आम जड़े जड़े सतीर्थ भाव में ये कार्य संपादन करार महारक सुजोग लाभ कर निजक धन्य मन करुचु। यही घोष जात्रार यो महनीय परंपरा, ये घोष जात्रार यो विश्वजनीन चिंताधारा एवं जगन्नाथ चेतनार जो उत्तरण से उत्तरण आज विश्ववासी को प्रलुब्ध कर श्रीक्षेत्र प्रति महाप्रभु प्रति। एवं समय जिते जिते अतिक्रांत होश्व जिते जिते जटिल हो महाप्रभु से गृहीत होती विश्ववासी द्वारा। एवं महाप्रभुंकर अपार करुणारु विश्वरे जो शांति सद्भावना सहृदयता ये सब परिपूर्ण होउची एवं मनुष्य निज चेतनार जो उत्तरण अनुभव करुची निज भितरे नकारात्मकतार विनाश एवं सकारात्मकतार उद्भव ये जो मनुष्य को एक उन्नत स्तर रे पहुँचाऊँची मनुष्यर अंतर मन रे जो विश्वास जात करुची महाप्रभु एवं से विश्वास एते प्रशांत एते स्वच्छ एते शुभ्र एवं मनुष्य को एते परितृप्ति प्रदान करुची जे मनुष्य व्याकुल हो जाऊँ रथजात्रा महाप्रभु को दर्शन करने केवल दर्शन करने ना ये जो समुद्र भली जनता अग्रसर हो रथ मानक रजु धरवाई चेष्टित होती प्रलुब्ध होती तार एकम्र कारण हो महाप्रभु को स्पर्श करार अधिकार आमर ना। महाप्रभु को सीना आम स्पर्श करना कि रथजात्रे महाप्रभुंकर रथरे जो रज्जु बंधाई ताकू स्पर्श कले महाप्रभुंकर स्पर्श आम पाखक आसव आमर स्पर्श महाप्रभु पाख जो आमर स्पर्श महाप्रभु पाख स्पर्श आम पाखक आसव यहीटा हूँ प्रतीकात्मक भाव में जीव एवं परमर मिलन। परम जिते निजक प्रसारित कर दिंती से जीव आड़क अग्रसर हो जाती। तेणु श्री अरविंद कही जितेबले आम भगवान प्रति गोटे पद अग्रसर हो भगवान आम पाख तीन पद अग्रसर हूँ कारण से करुणा बरुणालय तांकर आम प्रति असीम करुणा केवल आम प्रति नुह सकल जगतर विश्ववासी प्रति तांकर संप्रदाय वर्ण जाति ए सब निर्विशेष समस्त प्रति तांकर जो अपार करुणा अच्छी से करुणार प्रतीक भाव में रथर रज्जु आज प्रसारित होती बड़दाण्ड को जहाँ को स्पर्श करने आम समस्त मन भितर एत व्याकुलता एत उत्कंठा आज धारा बरणी एवं अतीतर धारा बरणी मानक जो मैंने सहयोग करते आज विशेषकर बाहुड़ा धारा बरणी आपण पहुँचवापाई जे दुईटी आकाशवाणी दुईटी विभाग जो सहयोग कर विभाग में प्रथम विभाग हूँ कार्यक्रम विभाग से श्रीजुक्त जयकिशोर नागर श्रीमंत पटनायक दिलीप कुमार नायक विनय कुमार सामंतराय प्रज्ञा पारमिता साहू राजीव कुमार महंत सत्यस्मिता बेहरा अक्षय कुमार सेठी एवं वैषयिक विभाग जो मैंने कार्य करते से संजुलता नायक सिलेन पटनायक सुभाषिष राजगुरु महापात्र संबित कुमार पसाय

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है।
3: डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पेंसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की 3rd और 4th लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: कार्यक्रम सुनिंट आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र श्रोताबंधु बर्तमान आसत जाना चलित अधिवेशन प्रसार होतोटी कार्यक्रम संपर्क सूचना ठीक

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात।
2: सबसे बड़ी खास बात है इस कार्यक्रम की वो यही है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत अनौपचारिक होकर बातचीत करते हैं।
1: आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ।
3: पूरा देश पूरा लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके अनुभवों से वाकिफ हो रहे हैं।
1: साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा।
4: जब भी रविवार के दिन मन की बात कार्यक्रम शुरू होता है सुबह से ही हम सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
1: श्रोताओं, आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगोव के ओपन फोरम और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप में पोस्ट कर सकते हैं।
5: मेरे मन की बात आपके कारण सच्चे अर्थ में आपके मन की बात बन गई है।
6: सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए

तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपये के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है।
उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारी सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा।
करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण

अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना माध्यम रे प्राय 60 कोटी लोक 5 लाख टंका पर्यंत मागणा उपचार पई होईछंते योग्य हिताधिकारी ए पर्यंत 12 कोटी रु ऊर्ध मागणा चिकित्सा करा जाई छे जेउथरे गरीब परिवारक चिकित्सा खर्च प्राय 2 लाख कोटी टंका संचय होई परिछि आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करि आयुष्मान कार्ड बनंतु अधिक सूचना पई 14555 नंबर को कॉल करंतु
1: आपणंक पिलार उज्ज्वल भविष्यत पई बाजीराउत शिक्षा निकेतन विद्यालयर आडमिशन नर्सरी ठारु क्लास अष्टम पर्यंत आरंभ होई जायछि तबे सविशेष सूचना पई जोगाजोग करंतु सेक्टर 3 राउरकेलार बाजीराउत शिक्षा निकेतन मोबाइल नंबर 9937328280 रे
2: ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानकु सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसीहा खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु भाग चाषी ऋणी ओ अणऋणी चाषी समस्त निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकू पड़िबो अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि ओ समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु
3: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସିନେ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୀତ ଶୁଣିବା ହିରୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନୁରାଧ ପଡ଼ୱାଲ ଏବଂ ମନୋହର ଦାସ ରଚନା ଆନନ୍ଦ ବକ୍ସି ସଙ୍ଗୀତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ୟାରେଲାଲ

0: किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
1: महेन्द्र कुमार पटनायक दीर्घ 31 वर्ष प्रशासन जीवन अनुभूति को सार्वजनिक करने उद्देश्य प्रशासक आत्मलिपि पुस्तक परिकल्पना कर प्रशासन समस्त गुरुत्वपूर्ण पदवी में रही किपर विभिन्न संवेदनशील आईन श्रृंखला परिस्थित को सामना करस्तक स्थानित
0: ओडिशा सरकार समवाय विभाग तरफ राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानकु सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसीहा खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चाषी ऋणी ओ अणऋणी चाषी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका देवाक पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
2: पुलिस
3: मिस सीमा
2: आज्ञा
3: एबे पुलिस स्टेशन आसंतु। रुहंतु नाले घर को आसी जिबु। हां
2: काई के किंतु मो
3: एकोटिया अन्य कोठरी को जानतु। आपनन को पुओ आम कस्टडी रे अछि आ आपन डिजिटल अरेस्ट रे अछंती।
2: डिजिटल अरेस्ट
3: 1 लाख दियंतु पहुंची जिबे।
2: इत्ते टंका?
3: अच्छा ठीक अछि गोटे लिंक पठै छी एबे प्रोसेसिंग पई 30,000 दियो नहले पुओ जेल जिबो।
2: जेल तो तुमे जिबो तुमरा चेहरा रेकॉर्ड हेई सारी छी।
3: अरे
2: डिजिटल अरेस्ट भली किछि नाही ए सब फ्रॉड सेथि पई पैनिक होंतु नाही। पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधी को फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु। तांको कोनोसी टंका पठांतु नाही आ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु।
4: हेलो मम्मा
2: हाय
4: आरबीआई कहे
2: सचेतन होंतु सतर्क रहंतु।
0: ओडिशा सरकार को समवाय विभाग तरफ राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानकु सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसीहा खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चाषी ऋणी ओ अणऋणी चाषी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराइ परिबे। चाषी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका देवाक पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
5: श्रोताबंधु शुणुंट सिने संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी राउरकेला केन्द्र कार्यक्रम शेषे शुणा बी होत एसी चलचित्र कंठशिल्पी अनुराधा पटवाल और मोहम्मद अजीज रचना समीर संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: শ্রোতাবন্ধু, গীত শেষ হেলা সিনিয়র সঙ্গীত কার্যক্রম আকাশবাণী রাউরকেলা। পরবর্তী কার্যক্রম সমাচার সন্ধ্যা রিলে করছো আকাশবাণী দিল্লি।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल

0: को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
5: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय

0: मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर एक डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहाँ पर हम ज़्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार।

0: अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Proceedings of both Houses of Parliament remain disrupted amid ruckus by opposition. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat, affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड डॉक्टर

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। इनका साथ दे रही थी उषा खन्ना, बोल इंदिवर के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका। आपके लिए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, खय्याम साहब का संगीत, जानिसार अख्तर के बोल, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम रजिया सुल्तान।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे फिल्मकार की जिसने रुपहले पर्दे पर छेड़ा देशभक्ति का राग। मेरा

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और लेखक मनोज कुमार की।

0: परिवर्तन।
1: मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था। ये जगह अब पाकिस्तान में है। उनका वास्तविक नाम है हरि कृष्ण गोस्वामी। जब वो 10 बरस के थे तो देश का बंटवारा हो गया और पूरा परिवार दिल्ली में आ गया और रिफ्यूजीज यानी शरणार्थियों के एक कैंप में पुराने राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने लगा। मनोज कुमार ने अपनी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ही पूरी की। बचपन से ही दिलीप कुमार उनके पसंदीदा अभिनेता थे। वो दिलीप कुमार की कॉपी किया करते थे अपने कॉलेज के दिनों में। शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने कुछ छोटे मोटे काम किए, यहां तक कि उन्होंने सिलाई मशीन के सेल्समैन के तौर पर भी कुछ दिन काम किया। बाद में अभिनेता बनने का सपना लेकर मनोज कुमार मुंबई आ गए और यहां उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की अपनी शुरुआत, जैसे सन 1957 में आई थी फिल्म फैशन।

तकरीबन 5 बरस बाद विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता के जरिए मनोज कुमार को मिली अपनी पहली बड़ी कामयाबी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी माला सिन्हा।

सन 1965 में ही विचार आया शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनाने का। फिल्म शहीद का निर्माण बहुत सारे संघर्षों से घिर गया था, लेकिन मनोज कुमार ने ठान लिया था कि ये फिल्म तो बनकर रहेगी और शहीद भगत सिंह के जीवन पर सबसे प्रामाणिक फिल्म यही है जिसमें मनोज कुमार शामिल थे। इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा भी नजर आए। फिल्म के गीतकार और संगीतकार थे प्रेम धवन।

मनोज कुमार के करियर के दो अलग अलग पहलू हैं। एक वो पहलू है जहां वो रूमानी नायक के तौर पर कई फिल्मों में नजर आए, और दूसरा पहलू है भारत कुमार वाला पहलू, जहां उन्होंने देशभक्त

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थीं गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति कौन थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए, पूरब और पश्चिम। ये फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

सन 1972 में मनोज कुमार नजर आए फिल्म बेईमान में। इसी साल मनोज कुमार ने अपने प्रोडक्शन से अगली फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शोर।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीना तमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबरी में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

क्रांति के बाद मनोज कुमार की फिल्में ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे मनोज कुमार नेपथ्य में चले जाते रहे, लेकिन मनोज कुमार के चाहने वाले कायम रहे। आज भी उनके मैनरिज्म को, उनकी अदाओं को, रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी को लोग बहुत याद करते हैं। आइए सन 1970 में आई फिल्म पहचान का ये गाना सुने, जिसे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार नीरज ने लिखा।

0: सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव।

आसिया। अरे ए मोबले देख देख तोते देखा करियो किए सब आछंती स्वयं महापुरुष पंचसखा।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश कर घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला

0: ठोस कदम है जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रहीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सुनिले हिंदी संवाद आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी राउरकेला श्रोता बंधु आज अधिवेशन शेष करने पूर्व आसंतु जानिबा आम आगामी काली अधिवेशन प्रसार होगा केतोटी कार्यक्रम संपर्क सूचना। आगामीकाल सकाळ 6:05 ରେ ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ